पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले बिहानको 9 बजे।

सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठे। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

0: विवेक
1: विवेक के चाहिएको रहेछ त उहाँभित्र जित्नको लागि?
0: लिरिकल चाहिँ बवाल हुनुभयो रहेछ होइन फर्स्ट टाइम, अनि पेन गेम पनि खोजेर हिँड्ने कति समय लाग्यो मलाई थाहा छ साथमा के आइ
2: भाइको नाम के हो?
3: ब्लोक अन द माइक
2: ब्लोक पाण्डे
3: लोक
2: हजुर
3: लोक पाण्डे
2: भुलोक
3: भुलोक
2: भुलोक
3: भुलोक
2: यस
3: यस सर
4: नाइस नेम
2: थ्याङ्क यू सर
3: थ्याङ्क यू
2: सुनिदिनु त है भाइ एकैचोटि अब टक्क ल

0: अगाडिको ओपनिङवाला लाइन के अरे त्योवाला टोन एकदम राम्रो छ. त्यसपछि ऱ्याप पाउँदाखेरि तिम्रो भोइस पनि राम्रो छ है. यस किप अप द गुड वर्क.
1: थ्याङ्क यू.
2: नमस्ते भाइ, के छ खबर?
1: एकदम ठिक छ दाई, अलिकति के छ?
2: मेरो ठिक छ. के हो नि नाम तिम्रो?
1: मेरो नाम चाहिँ सागर सुनार. स्टेज नेम चाहिँ एक साथ.
2: स्टेज नेम के भन्नु?
1: एक साथ.
2: ल जाओस्.

0: नाम?
1: सकम्बरी।
0: सकम्बरी?
1: हजुर। तपाईँको नि?
0: सूर्यवीर।
1: सूर्यवीर
0: जोक्सपार। बाई द वे आम देव
1: डिरेक्टर,
0: म तिमीलाई मेरो म्युजिक भिडियोमा लन्च गर्न चाहन्छु।
1: अनि डिनर चाहिँ गर्नुहुन्न?
0: आर्ट्स मोड लाइट क्यामेरा

पार्थिवास एफएम समय सूची। यो पार्थिवास एफएम को समय हो, अहिले रात को 8 बजे।